0: लाज रंगे तारा खिजवा देना, नता लाज रंगे तारा खिजवा देना, हो गो रवंगे तुम बने जरा बस गप्पी जले ले ले यो ले ले यो ले यो ना ना दारी कोनी अंगला जरा बुला बुला देने आलू जरो कल कोई लामा जरो उड़ा के तारों
1: Thank you.